किन्हीं किया परवृत पसारा, किन्हीं किया पूजा विस्थारा, किवन किन्हीं निवल भुयंगम साधे, मोहे दीन हर हर आराधे। तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा, किन्हीं ग्रह तजवन खंड पाया, किन्हीं मोन अवधूत सदाया। कोई कह तो अनन भगवती, मोहे दीन हर हर ओट लीती।

जीव जंत उस पानी अंदर रहण वाले हन। फिर तेनू उन्हों का पहाड़ से जरूर व्यापदा होगा, इतनिया नदियां नाले निरंतर चल रहे जिन्हों का कोई अंदाजा नहीं कितना पानी, तो सारा पानी फिर जिस समुद्र च जाके पैंदा उहदा कोई अंदाजा नहीं, फिर तेनू उहदा पहाड़ जरूर व्यापदा होगा। तो भाई साहब जी ने यह सवाल किया।

करो सदा प्रभ अपने मन मेरे करते नू सहलाए। होर वस्तुआं दी बड़ी उस्तत कर दे, ऐ चीज बड़ी खूबसूरत, ऐ चीज बड़ी चंगी, ए भोजन बड़ा सोहना बने, बड़ा स्वाद लै, ऐ वस्तु बड़ी ही अच्छी है, एदे वर्गी संसार ते कोई भी चीज नहीं। होर बड़िया उस्तां कर दे, बड़ा कुछ आखद, मनुख की भी उस्तत बड़ी कर दे, पर जिदी उस्तत करन योग है उसी कदी कीती ही नहीं, कदी उसनू सलाया ही नहीं कि असली जिहड़ी उस्तत करन वास्ते सी संसार ते आए हां उते कीती ही नहीं। ऐसा ही सवाल मरदाने दे अगे साहिब गुरु नानक साहिब ने कीता, आखिया मरदाने आ की करन, आखद साहिब जी लोकां दी उस्तत करन ते अपना घर दा गुजारा चलान, ते साहिब आख लगे मरदाने आ लोकां दी उस्तत ना कर, आ मैं तेनू अकाल पुरख की उस्तत करनी दसा, अकाल पुरख की उस्तत कर, यह तो उस्तत झूठी है लोगों की करनी, अकाल पुरख की कर, यह सच्ची उस्तत, यह उस्तत करेगा कभी भी भुखा नहीं रहेगा। यह गुरु नानक का वर हो मरदाने, साहबा ने उस्तत दे विच ला दिता, आप भी जुड़ जाते सन ते मरदाने नू भी जोड़ लेंदे सन। चल मरदाने आ बाणी आई आ छेड़ रबाब, कीर्तन विच लीन हो जाना ते काल पुरख की उस्तत करनी, ओही जोत सानू उपदेश कर रही है, हे मन अकाल पुरख की उस्तत कर, मन मेरे करते नू सहलाए, उस्तत करो सदा प्रभ अपने।

निवास जैसे मीन की ना घटे रुचि दीपक प्रगास घटे प्रीत ना पतंग की उस सुवास जैसे त्रिपत ना मध्यप को उड़ते आकाश आस घटे ना विहंग की।

आए जगत माता सुलखनी ने बेनती कीती, स्वामी आए सन बठांदे कोई जल पानी पुछ दे, आउंदिया ही एडी वड्डी पंड रखा दिती जे सिर ते पाई लैने दे। ते तन गुरु नानक पातशाह कहन लगे, सुलखनी ए पंड एहो ही चुक सकदा क्योंकि इसने सारे संसार दी पंड चुकनी है। उच्चारण करो श्री, दुखां विच जल बदल रहा संसार, ए सच नाल जोड़नगे। सुखां दे पाई वाल तां बहुत होंदे हन, पर किसे दे दुखां दी पंड अपने सिर ते रख लेनी ते सुखां दियां चोलियां भर देनियां, ए पाई लैने जी दे हिस्से आया है। हजूर ने बचन कीता, पाई लैने ने सारे संसार दी पंड चुकनी है। प्यारी साथ संगत, एक परचा ही सी ना, स्वच्छ बस्तर पहने होन, दूर तो चल के आवे ते फिर आउंदिया नाल चिकड़ दी भरी होई पनीरी दी पंड सिर ते रख देनी। पाई लैना जी ने सत वचन कीता, तन भाग समझे। तो इसलिए हजूर कहंदे हन, भाई गुर पीरां की इन्हां चाकरियां नूं इस सेवा नूं कोई समझ सकदा है।

इयों ऐसे दंत कलेश में खपियो संसारा तह बिन सतगुरु को नहीं पहले तनहारा गह ऐसे खड़ग